0: कबू का तीर कबू पेंसिल कबू झलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोलै फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख ठो
1: अरे कहाँ से नाम
0: तो कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 98484-27359 र 98-48-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै
5: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
6: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
7: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
8: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
5: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
9: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
10: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
11: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिका

0: कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर एक कैलालीकी गुरेही पर्व मनैना बारेके सूचना। थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली क्षेत्र नम्बर एक के आयोजना मन भदौ एक गते सोमबार के दिन टीकापुर के गुरही चौकमा दिन का 3 बजे से गुरही पर्व मनैना गुरही असरैना कार्यक्रम रहला कुंवर से गुरही असरैना कार्यक्रम मन सहभागी हो देखला सबको दादू भैया दीदी बहिन्या तथा सरोकार वाला हुकन हन हार्दिक अनुरोध करती। थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर एक टीकापुर कैलाली।
1: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 औं वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
2: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 औं वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18 समय बिहान 11 बजे।
2: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091 560 892।

0: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला। सञ्चालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97620203000 र 98656920026।
1: दाई बेड भूक लाग्ता, खाजा बाँकी नै। ए काकी फे आइल बाटी, राम राम काकी।
2: राम राम हो नानी, मजा बाटो ऐसन ले छाइट भारी हो स्याकल बाजे। आप भली भुआस कर दिए परल है, समय में भुआस कर दिल से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पड़ना।
3: आ दिदी फे ऊ बेला आपन कट्रा पहना इच्छा रह, छुट्टी में भुआस कर दे का मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू। दीदी मई चाह ई बाल विवाह कर नी चाहू, ई बाल विवाह नी करन दीदी।
4: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दुनू के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत, ऊ हिंसा के शिकार बन सकत। वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई से थीस, ऊ रोजगार फिर नहीं पाए, ओ गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन। नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई, असिन करैला से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रूपया सम जरिमाना हुई सकत। ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
0: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 300 देगिलक जनहित में जारी संदेश।
5: भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। डाक्टर बम बहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुर में भदौ 13 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 1 को भुरही पर्व मनाउने बारेको सूचना। थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 1 को आयोजनामा भदौ 1 गते सोमबारका दिन टीकापुरको गुरही चोकमा दिउँसो 3 बजेदेखि गुरही पर्व मनाउने कार्यक्रम रहेकाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दछौ। थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 1 टीकापुर कैलाली।
2: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
6: टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा काजी था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417
6: उपभोक्ता वर्गमा टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोध आफूलाई आवश्यक औषधि खाद्यान्न पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति मूल्य सूची लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं
7: आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं
6: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं
7: वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल बिजक लिने बानी बसालौं
6: सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं
7: अखाद्य रंग वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं
6: लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र वस्तुको ब्याज नम्बर तौल अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं
7: साथै उत्पादन मिति उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौं
6: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने खरिद गर्दा मूल्यमा मोल मोलाई गर्न पाउने र आफूले खरिद गरेको सामानमा कुनै त्रुटि भए तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो
7: खरिद गरेको माल सामान र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य वा जीवधनमा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित विक्रेताबाट कानून मजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने उपभोक्ताको अधिकार हो
6: उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आफू पनि सचेत बनाऊ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ
7: कुनै वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव वा उपभोक्ता हित विपरीतका अन्य कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भए गरेको थाहा पाएमा तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय ओडा कार्यालय स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टीकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ
6: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति टीकापुर नगरपालिका
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
8: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98688000008 र 98253677272।

0: अपनौ कण्ठे टिकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास ओ रिङवाला टोयलेट सरसफाई कर परिकलसे आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाहना सम्झवे संचालक शेरबहादुर थारू सम्पर्क नम्बर 97620300 ओ 98656920026।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। आज नाग पंचमी पर्व, नाग के पूजा अर्चना करके घर के मूल द्वार में नाग के चित्र चपटा के मनाईती। थारू समुदाय से भर गुरही पर्व मनाईती। भजनी में स्थानीय उत्पादन से नहीं दीवा खाजा बनाईना बहस शुरू। दीवा खाजा पोषण युक्त बनाई पर्ना में चाशो। आज देशभर पानी पर्न संभावना, कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना र लगभग से सतर्कता रहना मौसमविद के आग्रह। डायलिसिस सेवा बढ़ाई लाख सुर पश्चिम प्रदेश सरकार के निर्णय। टीकापुर अस्पताल में 300 थपना। थारू समुदाय सावन महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रमुख सांस्कृतिक रूप में गुरही गुरिया पर्व मनाइना चलन बा। खास करके ये पर्व बाली नाली में रोग व्याधि नहीं लागे कहना उद्देश्य से लेके ये पर्व से बाल बालिका हुकरन के रक्षा करना, रोग व्याधि हटना तथा प्रकृति संगे संबंध जोड़ना काम करती बा। थारू समुदाय से गुरिया पर्व है खेतीपाती पाछे के शुरू अति समेत पर्व के रूप में लहलबा। नाग पंचमी के दिन ने यी पर्व मनाइना रलक ओर से यी पर्व है देश भर के थारू समुदाय धूमधाम के साथ मनाईती रहल बाट। गुरिया पर्व में गांव भरी लड़का पर्खा गांव से दूर चौक चौराहा में समेत जाके कपड़ा के बनायल छोट गुरिया असरैना चलन रहल बा। यी पर्व में बाल बालिका हुकरा संबंधित पर्व के रूप में समेत लेती रहल बाट। मनोपाचक समय आधुनिकता संगे बजार के चौक चौराहा माफे मनाइना करती रहल। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र संकाय के सह प्राध्यापक डॉक्टर नाथुराम चौधरी के कहाइबा गुरिया असरैना छोट लड़का परगन के समेत आंखी नहीं पाके असके जूरी नहीं आए घाव खतीरा चोखाए उल्टी जैसी रोग चोखाई कहना गांव मनई समेत दुख कष्ट संकट से अंत्य समेत औस्तक विपत्ति से समेत भोगना जनविश्वास रहल सह प्राध्यापक डॉक्टर नाथुराम चौधरी के कहाइबा। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व वकल गुरिया पर्व में थारू समुदाय तमाम कार्यक्रम करके मनाईती बा। पर्व के अवसर में भदौ 1 गते टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के चौक में भानु चौक में थारू समुदाय के गुरही गुरिया पर्व मनाइना तैयारी करल बा। थारू कल्याणकारी क्षेत्र नंबर 1 के कोषाध्यक्ष तथा गुरिया पर्व के महिला संजाल के संयोजक शर्मिला

0: चौधरी जानकार देलेबाटै जानकी गाउँपालिकाकी दुर्गौली चोकमा फेरि जानकी जेसिसकै समन्वय हो। जानकी गाउँपालिकाकै समन्वय हो। जानकी जेसिसकै आयोजनामा गुरिया पर्व मनाइन तयारी गरल। जानकी जेसिसकै अध्यक्ष अनिल चौधरी के कहाइबा। भजनी नगरपालिकामा जग्गरलक विद्यालय परिसरमा शिक्षक विद्यार्थी के सहभागितामा करेसा बारी मनसे उत्पादित फलफूल तरकारी से उसमें जग्गा नैरलक विद्यालय के किसान हुकरण से उत्पादित फलफूल तरकारी किनकी दीवा खाजा बनैना विषय में लौवा बहस शुरू छलफल हुई बा। स्थानीय उत्पादन मरलक प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 20 रूपया लगानी से समेत फिर गुणस्तरीय खाजा दे सेकना उसमें विद्यालय के उत्पादन कर सकल सिकल बढ़ाई सेकना नगरपालिका हो अभिभावक के समेत अपेक्षा रहल बतागिलवा। विद्यालय में बाल बालिका हुकरन खवाजिना दिवा खाजा पर्याप्त पोषण युक्त समेत बनैना विद्यालय में करिसबारी समुदाय में समेत फलफूल तरकारी खेती बढ़ैना प्रयास करती रलक सरकारवाला हुकरा एकमत हुईलबाट। शनिचर के कर्वेश्वर में समेत ठूलक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शिक्षक अभिभावक किसान विद्यार्थी सहभागिता कार्यक्रम में सहभागी हुकर सरकार से प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी दिवा खाजा केलक 20 रूपया अपर्याप्त हुई बतैतियालबाट। भजनी नगरपालिका के मा विकास केलक युवा एके बद्धता यार्ड के समन्वय में शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा से सक्कू विद्यालय केलक दिवा खाजा के मेनू बनाइल बा। मेनू अनुसार हरेक दिन पोषण युक्त खाजा खुआई पर्ना व्यवस्था बा। वर्षा में बाढ़ दुबान से प्रभावित रलको से आर्थिक अवस्था कमजोर रलको घर ही से खाजा समेत पकाई निसेकना रलक ओर से विद्यालय में खाजा से बाल बालिका के भुकरन के भूख मेटाए कहना अपेक्षा करती रहलवा। कम विद्यार्थी रलक विद्यालय में खाजा पुगेन कठिनाई हुई ओ समेत आगे दिन में गिरागुड़ी औस्तक भिजाके फे विद्यार्थी अही कहना एक नई हुलक ओर से खरवा से गैल शिक्षक राजकुमार चौधरी के अनुभव बा। शिक्षा अधिकृत देवराज अवस्थी फे विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थी मिलके करे सवारी बना के कृषि सीप सीखना और रसायन मुक्त समेत पौष्टिक खाजा उत्पादन कर सकना संभावना रहल बटोले बाट। वार्ड नंबर 5 के वाड़ा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद खनाल भजनी में दिवा खाजा के खर्च लथालिंग समेत समस्या ग्रस्त रलक ओर से बेला खाजा में फे थाई उत्पादन देना लौवा समेत सोच से सहयोग पुग्ना बटुले बाट। उस्तक वार्ड नंबर 7 के वाड़ा अध्यक्ष अमर कठरिया के समेत संभावना रलक ओर से ध्यार विद्यालय में करे सवारी नैरलक समुदाय में उत्पादन हुईलक किसान हुकरन के तरकारी प्रयोग करना सेकना प्रोत्साहित समेत करना बटोले बाट। कर्मेश्वर मावी के अध्यक्ष नवराज बोहरा तुबान क्षेत्र में हरेक वर्ष फलफूल तरकारी फलैना कठिनाई रलक ओर से हिउँद के संभावना में समेत रलक बटोले बाट। स्थानीय उत्पादन मन से उत्पादित गुणस्तरीय आर्गेनिक वस्तु मन से सस्तमा उत्पादन करके खाजा खोइना समेत यार्ड के धारणा रहलवा। गणेशमान आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक जाडोलाल राय से आपने उत्पादन मन से समेत खाजा संभव देख के विद्यालय में करेसा बारी शुरू करल बटोले बाट। खोज खबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फेर से यही सुन तिरबी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टिकापुर कैलाली को अत्यंत जरूरी सूचना। व्यावसायिक रूप में केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुखड कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091551414 091551414 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टिकापुर कैलाली।
2: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन त जन्म परे जस्तै लाग्छ
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
5: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको धड्कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार
0: विश्राम पाछे फेरसे स्वागत बा नाग पञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागके पूजा अर्चना गरके मनैती बाटै घरकै मूल द्वारमा विधिपूर्वक नागके फोटो चप्ताके यी पर्व मनाइन चलन बा हरेक वर्ष श्रावण शुक्ला पञ्चमी के दिन नाग पञ्चमी मनाजै यी पर्वमा जेठमा समेत अधिमास पर्लक कारण से सौर मास अनुसार भदौ की पहिल दिन यी पर्व पर्लक हो नाग के तस्वीर टंगाके समेत वर्षभर घरमा नाग ओस्तक सपुवा बिच्छे लगायत की जीव से दुख नै देना के साथे अग्नि मेघो समेत चट्याङ के भय से फे बच सक जायत कहना धार्मिक विश्वास रहल नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति के पूर्व सदस्य डाक्टर देवमणि भट्टराई के कहाइबा नाग पूजा के प्रचलन में वैदिक काल से लेकर नई शुरू हुई लक मान गिल बा वैदिक मान्यता अनुसार नाग है सपुआ के राजा मन चलन बा नाग रिसैला से पानी के अभाव हुई ना रलक और से पानी के लक फे नाग है खुशी पारना पूजा करना परम्परा बैठल बा उसक बरहा पुराण में समेत उल्लेख रहल अनुसार श्रावण शुक्ला पंचमी में नाग राजा संगे ब्राह्मण के समेत संवाद रलक और से फे आज के दिन नाग पूजा किसैक लाग प्रसिद्ध मानजिना चलन बा प्रत्येक घरमा नाग रलक ओर से घरके जमिन तरक बैत्य रलक नाग रिसैले से घरके जग नै समेत भटकना कहना धार्मिक विश्वास से रलक नाग पूजा करना परम्परा है निरन्तरता देती आयल बटवागिल बा नाग हे विष्णु शिवा के रूपमा मन्ना प्रचलन वैदिक सनातन काल से रहल बा भगवान शिवा के नाम से माला लगैना विष्णु भगवानमा समेत जल उपर शेष नाग के समेत संयममा के समेत छट ओर के समेत शयन करना रलक ओर से दुनू भगवान है समेत नाग के रूप में मनना चलन रहलबा। हाल देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव कायम रहलबा। देशभर मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मानसून की न्यून चापीय रेखा पूर्व से सरदर स्थान के आसपास और पश्चिम ओर समेत सरदर स्थान से उत्तर नेपाल लगह रहलबा। अब देशभर साधारणतया मौसम बदलल बाकलसे बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के समेत कुछ स्थान में वर्षा होती रहलबा। कोसी मधेश उसके कर्णालियों समेत सूर्य पश्चिम प्रदेश के कम स्थान में समेत मध्यम खाल के पानी पड़ती रहल महाशाखा से जनायल बा। आज देशभर साधारणतया मौसम बदलन बा। गंडकी लुम्बिनी कर्णाली और सूर्य पश्चिम प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में ढेर स्थान में मेघगर्जन चट्यांग सहित के पानी पर्न संभावना रहल बा। कल से सूर्य पश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश में तराई भूभाग में ढेर स्थान में पानी पड़ती बा। मधेश प्रदेश सहित के कोसी बागमती प्रदेश के तराई भूभाग में कम स्थान में मेघगर्जन और चट्यांग सहित के मध्यम पानी पर्न अनुमान करल बा। महाशाखा के अनुसार गंडकी लुम्बिनी कर्णाली और सूर्यपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में साथे लुम्बिनी और सूर्यपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल बा। लावागठित सूर्यपश्चिम प्रदेश सरकार के प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान में डायलिसिस सेवा विस्तार करना निर्णय करल बा। नवनियुक्त मुख्यमंत्री खगराज भट्ट के अध्यक्षता में बैठल मंत्रिपरिषद के पहल बैठक से प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य संस्थान में डायलिसिस सेवा विस्तार करना निर्णय करल बा। सरकार से डायलिसिस के लक सेती प्रादेशिक अस्पताल में 5 सैया के उसको लम्की चोहा प्रादेशिक अस्पताल में 5 सैया उसको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल में 4 टीकापुर अस्पताल में 3 सैया थप्ना निर्णय करल बा। उस करके जोगबुढ़ा प्रादेशिक अस्पताल बैलपाटा में अस्पताल लगायत में समेत अन्य जिला में समेत अस्पताल के दुई दुई सैया समेत थप्ना निर्णय करल बा। खोजखर मायागरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछ फेर्सै बी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 1 कैलालीकी गुरही पर्व मनैना बारेके सूचना। थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 के आयोजना मन भदौ 1 गते सोमबार के दिन टीकापुर के गुरही चौक में दिन का 3 बजे से गुरही पर्व मनैना गुरही असरैना कार्यक्रम रहलक। उसे गुरही असरैना कार्यक्रम मन सहभागी हो देखला सबकू दादू भैया दीदी बहनिया तथा सरोकार वाला हुकन हन हार्दिक अनुरोध करती। थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 1 टीकापुर कैलाली।
8: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
9: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
8: तपसिल
9: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सकल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
8: बैंकको सकल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
9: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
8: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
9: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
8: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
9: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
10: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
12: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
13: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
12: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
13: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860-71-024 ओ 9846-77-417।
14: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। नागढुंगा मोगलिंग सड़क खंड के समेत पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत के धार्दिक के गुजरी लगहा के समेत 40 मा सुखा पहिरो गिर के दुईतर्फी सड़क अवरूद्ध हुई बा। सोमवार के बयान के पौने 6 बजे और गिरलाक सुखा पहिरो के कारण दुईतर्फी सड़क अवरूद्ध हुई ढाडिंग प्रहरी से जनायल बा। प्रहरी के अनुसार निर्वाधित सड़क में समेत आयोजना के डोजर प्रयोग करके बफे समेत पसगोरेना काम होती रहल बा। कल से पहिरो गिर के सड़क अवरूद्ध होके काठमाण्डो जैना ओ काठमाण्डो से बाहर आईना सवारी साधन के लम्बा जाम लागल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के संभावित विपद से हुईना जनधन के क्षति न्यूनीकरण के लाख पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य संयंत्र चुस्त बनाईना प्रदेश जिला स्थानीय तह सुरक्षा निकाय बीच समन्वय प्रभावकारी समन्वयमा जोड़ दै गेलबा। मुख्यमंत्री खगराज भट्टाचार्यकालिक प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद के सचिवालय के रूप में रहक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के अधिकारी संगे प्रदेश के समग्र विपद जोखिम संभावित जोखिमयुक्त क्षेत्र के पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार्यकलाग सरकार तैयारी के बारे में जानकारी लैती विपद व्यवस्थापन हे प्रभावकारी बनाइना निर्देशन करले बाटै। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। आज नाग पंचमी पर्व, नाग के पूजा अर्चना करके घर के मूल द्वार में नाग के चित्र चपता के बनाईती और थारू समुदाय से घर गुरही पर्व मनाईती। भजनी के स्थानीय उत्पादन से नई दीवा खाजा बनाईना बहस शुरू, दीवा खाजा पोषणयुक्त बनाई पर्व में चाशो। आज देशभर पानी पर्न संभावना, कुछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना रलको से सतर्कता अपनाईना मौसमविद के आग्रह। डायलिसिस सेवा विस्तार करना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के निर्णय, टीकापुर अस्पताल में 300 थपना। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते विराम।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कैश पिता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी 25% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश पिता ले लीते कैश पिता ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा निपैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846239261
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
3: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
2: टीकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870 10672
3: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: पिता ले लीजिए
1: एंसल पैक किन लीजिए
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी ओपी प्रतिशत कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश पिता ले लीजिए कैश पिता ले लीजिए
2: एंसल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़ो ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना।
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिबारका दिन तपसिलको स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
3: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रमको हल ब्लक नम्बर 18, समय बिहान 11 बजे।
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-892।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस तबातीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रहे।
1: ओहो, ये बुढ़ान लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: 20% சம கேஷ் அபிர்தா சைலே பண்ணி சஹா பண்ணி
1: கேஷ் அபிர்தா லினு பாய்தா
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: कैश पे तो ले ली थे,
1: एंसल पैक किन ली थे,
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी, 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी,
0: कैश फिर तो ले ली थे, कैश फिर तो ले ली थे,
2: एंसल पैक किन ली थे, शर्त लागू हुई, एंसल नेपाल के लग।
3: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी?
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
3: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
4: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
5: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगनारो पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98684479, 98246025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98246028।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका प्रयत्न 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहते मैं मिशन के बैठक में बैठक के साथ भेट भाई आकाश चौधरी और मई बाट अपने संघ्रिया मैं मिशन संघरे कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई कना भरपूर आश में बटू संगारी आज हो निशाना कार्यक्रम तर निशाना में हमारे आज निशाना नहीं लगा कहे कि आज सावन महीना है विदाई कह के आज हमारे भदौ महीना है स्वागत कर ले बाती आज एक गते हो और आज के दिन चाहे विशेष करके नाग पंचमी यानी कि थारू समुदाय में चाहे विशेष करके गुरही पर्व पड़ल बाबई तब मारे आज के दिन चाहे सबको गांव ठाव टोल छर छिमेक समुदाय परिवार सारा जे हमारे खुशी हुई भी प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति पीछे पे खुशी भी आज खुशी के दिन हो आज हो गुरही असरैना असरैना।

करके पूरा मिला के गृहणी अशक बनैले रहें चिरकुट के। और थारू दाजू भैया लहंगा उंगा घाल के लहंगा चोलिया घाल के महिला दीदी बहनों के गुड़िया सराई जी ठाई संध्या कुन जस्ते चौक चौराहा और जस्ते तीन बजे चार बजे और जस्ते के समय मिलत वस्ते के गांव के कोई भी दक्षिण हुए या पूर्व हुए या कोहर हुए तर तीन बत्ती चौबत्ती ठाव में जाके गुड़िया सराई चौराहा पुरुष दाजू भाइयों के थारू पोशाक धोती लगा के उसे के गमछा लेके टोपी घाल के और मजा से सही रंगी बिरंगी सोटा बना के सही गुरही है पीटे जीना रही और रमाइलो रमाइलो करना रहा वहां रमाइलो नाच गान ढोल बजा के उसे के मंदरा बजा के मजा मजा के रमाइलो करना हुई। आजकल तो सही डीजे बजा के सही रमाइलो करते हैं उसी संस्कार कुछ कम हुई थी बता संस्कार है हमारा नहीं बोला पन्ना हो। और आज के दिन अस्ते करना बाटो ठाव ठाव में ऐसी निशीन कार्यक्रम पेन हुई थी बाकी की मैं कार्यक्रम भर में बटे नहीं बाटू अपने उनके दूर न जाइदी कार्यक्रम में सहभागी जनैते कर विश्व 91.5/61/255 आज चाहिँ विशेष गरी गुरही असरैना कार्यक्रमको बारेमा आज हाम्रो बटवाब गुरही आज त्यौहारको बारेमा आज बटवाब अपने हुक्रे कसिक गुरही मनाइती गुरही कसिक मनाई थाप्ने के गाउँमे अपने हुक्रे कतर रमाइलो गर्थे सम्बन्धित अस्त अस्त गफ करब आज गफ कार्यक्रमलाई आफ्नो हुक्रे 91.5/61/255 का लाइन खोलेब अथवा एक गुरही असरैना गीत हाम्रो सुनब साउनिया आ गेल बर्खा फे छा गेल रमाइलो गीत घुगरी बस्ता गेल रे हाँ गुरही आ गेल रहा दर्पण कुसुमिया के रमाइलो आवाज में एक गीत जोड़ा गीत के पास में इन्हें बारू डायल करते कर भी 91.5/61/255 लाइन खुलेगा।

हजुर बिल्कुल रमाइलो यी एक ठो गुरही के गीत है, रमाइलो गीत, रमाइलो गीत घुघुरी बस्ता गिल्बा आज सुघरी रिस्ता गिल्बा आज बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोडली। वास्तवमा गुरहीमा गुरियामा चाहिँ घुघरी बनाइना रहत बस्तके घुघरी मिठ मिठ परिकार रोटी भौरी फुलौरी बनाके लैजिना रहत बस्तके गुरही चिरकुटके बनाके चाहिँ असलाई जिना रहे महिला दिदी बहिनीके लेहंगा लेहंगा चोलिया घालके घान ओर के मजाके रमाइलो गरेर जिना रहे गाउँके चौराहा चौबट्टी ओर या तीन बट्टी ओर कोही भी ठाउँमै अर पुरुष दाजुभाइ उस चौटालाई के ठटाई जितै ओर उहे घुघरी बाँध बाँध के उहे पकौरी उहे मतलब मजा मजा बरिया बना के सको जन एक एक चोटी बांध बात खाई चलाओ रात और रमाइलो करना चलाओ रात आज एक दिन वस्ते रही ठाव ठाव में संगा अपने उनके कसी के मनाईना तैयारी बाटी बिल्कुल हमारे कार्यक्रम में सहभागी जाना शून्य एकानब्बे 561255 था 0915612255 लाइन एकदम खुला भा मौसम फैन सुहाना भा पलघड़ी रमाइलो भा एकदम रमाइलो सुहाना मौसम अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता भा फटाफट डायल कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन भी का नाम है अपने अर्जी करम अनुरोध करम और निवेदन करम विशेष करके अपने ओकन तो कार्यक्रम सहभागी जनैते करबी कार्यक्रम में अटे करबी अपने कर हमारे रमाइलो सहभागिता रही कार्यक्रम में विशेष करके शुभकामना फिर देख लगाई सकते शून्य एकानब्बे 561255 का लाइन एकदम खुला बा तो गुरही आज रमाइलो गरब सको जाने रमाइलो मनाब हमारे संगे शुभकामना आदान प्रदान करे फिर अटे करबी कार्यक्रम में फैन से ठावगी जोड़ब गीत के पास मैंने बाटू डायल करते करबी शून्य एकानब्बे 561255 लाइन खुल बा

0: जब से मिलल हो नैनन से नैना दिलवा में का हो गेल हो। बिल्कुल रमाइलो गीत रहे कार्यक्रम में अपने हुकन के जोड़नु मई अपने हुकन के संग एकदम रमाइलो गीत रहे अपने के हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई शून्य 9561255 अर्थात 09156125 लाइन एकदम खुला बाकनामय जानकारी करती बाटो संगानी गुरही यानी कि गुरही मनैना आज के दिन हो और गुरही आश्रयना दिन हो आज तो गुरही आश्रय लग पुरुष दाजू भाई हमके फैन बिल्कुल शायद अपने हमके सोटा बनैना तैयारी कर रखी भी और अपने हमके आज हम धोती घाल के जिम कह के सोच रही भी और रुमाल गमछा मतलब कंधा में धर के उज्जर शर्ट लगा के दौना बेबरी के माला घाल के वैसे कि चाहिए अपने हमके चाहिए मतलब मुंटी में टोपी लगा के चाहिए आई भी करना मतलब गुड़िया साई जिम करना सोच बने ली कोई टेलीफोन लाइन में आल बात नहीं लागत में मैं बोल करना चाहूँ के हुई कहाँ से हजूर राम राम
1: हजूर राम
0: राम मालू राम जी हो
1: मालू राम
0: कसिन बा मालू राम जी हाल खबर
1: अब भाई तो बढ़िया बहरी
0: आज गुड़िया हो गुड़िया के मालू राम जी है देव धर शुभकामना मालू राम जी
1: बताइए
0: कहा बा अपने के वहां लिंग पानी वानी का ठेक पड़ल आज
1: पानी तो हेरी यहाँ रात भर आये
0: रात भर पानी आये
1: रात भर पानी आये
0: ओके तो आज सूटर फिर मजा लागल हुई घामने लागल हुई नहीं
1: आज तो सूटर फिर मजा लागल
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली गुड़िया उड़िया कैसी बात चहल पहल वहां लिंग अपने के गाँव कहाँ
1: ये तो हमारे गाँव से भीतर घर पत्ते नहीं चले हंसकर फिरी
0: गाँव से भीतर यानी कि गाँव से बाहर होगी भीतर हो
1: गाँव से थोड़ा थोड़ा बाहर बा भाई खेतों में है
0: खेतों में आज बा बस पता ही नहीं चलत को
1: गाँव तो गाँव ही हो मैंने ये घर ढेर नहीं हो
0: आप इनके घर कुछ कम बात हो खासे वोटर चहल पहल नहीं चल रहा नहीं
1: चहल पहल नहीं हो
0: ओके तो गांव और चाहिए जहाँ बस्ती हुई वहाँ मनाइन के संख्या हुई ही मनाई हुई ही वहाँ तो चहल पहल पे हुई ना तो आज एक दिन मौसम तो सुहाना बा आज अभिन था शीतर शीतर बा वही कौचा करती बाटी आज
1: हम उससे बैठला भी भाग खा खू के हेरी
0: ओके कार्यक्रम में चाहिए सहभागी जनैली आज अपने के गाँव में गुरही आश्रय जैसे कि नहीं
1: जैसे गोटगत मना जैसे मैंने हमारे गाँव में खास से नहीं रहा
0: अपने के गांव में खासे गुरही नहीं रहता अपने के गांव कहाँ सुन खरौला की कहाँ नहीं
1: खरौला खरौला
0: लमकी चूहा सात खरौला नहीं वहाँ लिंग चाहिए गुरही खासे वा सोचल अशक नहीं मनाई थे को हो
1: कम कम
0: कम कम मनाई थे तर सोचल अशक नहीं मनाई थे नहीं ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदम खुशी लागल कार्यक्रम में गुरही के आज गुरही हो भदौ के एक गते फेन हो आज गुरही फेन हो नहीं तो गुरही के शुभकामना शुभकामना देना मन हुई तो अपन संघरिया हुकरन नाथ पांच हुकरन शुभकामना देह मन
1: तो वह हमार सालियो के आते हैं वही शुभ वही शुभकामना देवी
0: ओके तो अब एक लाख हम पे विदा हुई ना राम राम
1: राम राम
0: वहाँ फोन कर रहे थे मालू राम जी रमाइलो गप फिर लमकी चूहा सात खरौला से वहां से हमार गप हुई ओके वहाँ अपन सालीहीन शुभकामना देने की गुरही के ओके ढेर धन्यवाद आप लोगों पर हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी 091-561-255 के लाइन खुले बा ठीक ठाक गीत जोड़ा गीत के पास मैंने बाटू डाल करते कर भी 091-561-255 लाइन खुलेगा

हजुर बिल्कुलै रमाइलो बिजोली हेर ती मोर जियारा डोलाउँ बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली आफ्नो गणका सँगै कार्यक्रममा भर्खर रेडियो खोलल विकास रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तै कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत सुनिसकि इन्टरनेट के पहुँच रहल सँगै मतलब इन्टरनेट के पहुँच रहल सँगै आफ्नो ठाउँसे अब जहाँ इन्टरनेट के पहुँच नै हो जहाँ रेडियो टी पठुई गरेसे उठाउने हामन www जहाँ इन्टरनेट जहाँ नाइटी पठुई गरेसे हामन चाहिँ रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट मार्फत सुनबी जहाँ रेडियो टिपी वहाँ www.tikapurfm.org यी लगन गरेर चाहिँ आफ्नो इन्टरनेटको पहुँच सँगैको सुनिसकि अब जहाँ चाहिँ रेडियो नाइट रेडियो मतलब इन्टरनेटको पहुँच के नाइ सुन्दी गरेर चाहिँ रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस मोबाइल मनसे फेन आफ्नो सुनिसकि मोबाइल सेट रेडियो सेट मार्फत ओके कार्यक्रममा सहभागी जनैते कवि कार्यक्रम आइटे कवि सुन्दर सुहाना सुहाना समय सँगसँगै मजा मजा गीत सङ्गीत सुन्न समय बा त आफ्नो कार्यक्रममा सहभागी जनैते कवि कार्यक्रम आइटे कवि करिब करिब 45 बजेसम्म यात्रा गर्वी आज हाम्रो यी भदौ महिना है स्वागत कर सकल बाटी आज भदौ महिना फेन सक्करी से अमन पानी से बरसात से स्वागत कर लेबा है हमार ठाउँमा अपने ठाउँमा कठक पानी बसल हमारे यहाँ पानी बिल्कुल बरसल और अपने ठाउँमा कसिन बरसल का नाम चीज हो तो फटाफट डाल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनैते कर भी ठीक ठाक की जरूरत गीत के पास आईटे कर भी डाल करते कर भी सुने का नब्बे 5 61 200 पर सुना लाइन खुलेगा

0: हजुर गोरिया थोरै इन्तजार गरले बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोडली कार्यक्रम भर्खर रेडियो खोलली विकास यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज विशेष गरी आज गुरही विशेष कार्यक्रम अपने संगीमय बटो और अपने कहरबाटी का कतिबाटी कसिक चल्ती बाबने के समय तो कार्यक्रम में सहभागी जन कभी कार्यक्रम में कभी ठीक एक सर्ट कमर्सियल ब्रेक और जाए व्यापारिक विश्राम व्यापारिक विश्राम के पास में बाटो रेडियो छोड़कर कहो पर जाएगी तत्सम सर्ट कमर्सियल ब्रेक ब्रेक के पास में बाटो
1: कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर एक कैलालीकी गुरही पर्व मनैना बारेके सूचना थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली क्षेत्र नम्बर एक के आयोजना मन भदौ एक गते सोमबार के दिन टीकापुर के गुरही चौकमा दिन का 3 बजे से गुरही पर्व मनैना गुरही असरैना कार्यक्रम रहला कुंवर से गुरही असरैना कार्यक्रम मन सहभागी हो दिएकला सबकू दादू भैया दीदी बहिनिया तथा सरोकार वाला हुकन हन हार्दिक अनुरोध करती थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर एक टीकापुर कैलाली
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका दिवस 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन् जस्तै स्कूल ब्याग क्यारिङ ब्याग लगेज ब्याग फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
3: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टीकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी
4: लो इत्ती छिटो आमा बन्न लागो त
5: भाइलाई भाग्न नचाहन्छु आज थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जान्नु पर्यो जस्तै लाग्छ
4: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
6: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
7: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल
8: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो दिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
7: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
9: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: अलकै लागि
1: क्यास फिर्ता ले लिते
2: क्यास फिर्ता ले लिते
3: एन्सेल प्याक किन लिते
1: जहिया फेन जहाँ

0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो घर?
0: ठिक छु। हजुर,
1: मलाई साह्रै तिमीलाई याद आउँछ साइली।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी
4: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
5: जब देखनो तू हिन है
4: यदि मन परत ही कल से अपन मन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के 2 कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0991-5162555 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9046747417।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी बुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास्तरा तुहार रामपुरान दिदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846349261
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: यो त डरे रिसाइजन कोलेमन खै
1: खै यति करलान्डन नजाने के गथे
2: यहाँ बियाली छ क्या
3: हे के भनम खै हे

0: तिम के मेरो छोरालाई गीता हेप्न पाइन्छ रोड नि बारिस के
1: हल्कै ग्यास
0: उज्जा मुर्दार
2: राम्रो मान्छे।

बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
1: चर्पी भर्ल चेपे का चिन्ता आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाईमा फोन गरी आब्बा का सरसफाई कै दिहे
2: फोन नम्बर कतरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
2: हेलो आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो
3: हजुर हो
2: महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा
1: कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास ओ रिङ वाला टोयलेट सरसफाई कर परिकलसे आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाहन सम्झवे संचालक शेरबहादुर थारू सम्पर्क नम्बर 97 6 20 20 300 98 6 56 92 026

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहाँ उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फेसुन तिरहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से थारू समुदाय पराग पूर्वक काल से मनाईटी अलग ग्रही प्रवास धूमधाम के साथ मनाईटी सुदूर पश्चिम में आज से हर्षोल्लास के साथ ओलके पर्व मनाईटी ऐसी पर्व से एक आपस में भेटघाट करना अवसर मिले न नागरिक उकरण के विश्वास भजनी में स्थानीय उत्पादन मन से नई दीवा खाजा बनाईना बहस शुरू दीवा खाजा पोषण युक्त बनाई पर्न में चाशो ओ आज से देशभर पानी पर्ना संभावना कुछ स्थान में भारी पानी पर सकना रलकोर से सतर्कता रहना मौसमविद के आग्रह। पश्चिम नेपाल के तराई क्षेत्र में बैठुया थारू समुदाय से प्राग पूर्वक काल से मनाईटी ऐलाक गुरही पर्व आज धूमधाम के साथ मनाईटी बाट थारू समुदाय भीतर सांस्कृतिक विविधता हेफे संरक्षण संवर्धन करने उद्देश्य लेके गुरही पर्व हे संस्थागत रूप में मनाईटी आयल बा। विशेष करके गुरही एक प्रकार के किरा के नाव हो यह नेपाली भाषा में गाइने किरा फे कहना चलन बा। गुरही असरैना काम ओराइल पश्चात गुरही संगे समेत लामगिल गेडागुड़ी तथा भूजा एकापस में बांट के खैना खोइना उ नाचगान करके रमाइलो करना प्रचलन बा। थारू समुदाय में लौवा पर्व क्रम के समेत शुरूआत के रूप में लेले कोर से ई पर्व रोग ब्याडियो नकारात्मक शक्ति हेफे गांव समाज से समेत हटैना सांस्कृतिक विश्वास में जोर दहलबा। गुरही में बाल बालिका हुकरा संबंधित पर्व रलक ओर से पाचक समय में युवा युवती सहित के सबको उमेर समूह फे हर्षोल्लास के साथ मनाईना चलन बा। थारू समुदाय कैलाली के तमाम स्थान में नाचगान रैली करके गुरही पर्व मनाईटी रहल बताइल बा। कैलाली के टीकापुर नगर पालिका और जानकी गांव पालिका में गुरही पर्व मनाईटी बाटे टीकापुर नगर पालिका में थारू कल्याणकारी सभा कैलाली क्षेत्र नंबर 1 जानकी गांव पालिका में जानकी जेसिस के आयोजना में गुरही पर्व मनाईटी बाटे। जानकी गांव पालिका के दुर्गौली में रैली सहित पूजा आजा नाच गान करके पर्व मनाईटी बाटे। कलश टीकापुर में फे औपचारिक रूप में कार्यक्रम सहित नाच गान करके गुरही पर्व मनाईटी बाटे। सुरपश्चिम में आज हर्षोल्लास के साथ ओलके पर्व मनाईटी बाटे। भदौ 1 गते अर्थात भदौ संक्रांति के दिन मनाजी न ई पर्व सुदूरपश्चिम के मौलिक पर्व हो। ओलके शब्द के अर्थ कोसेली हो। ससुराली और मामाली में मा जाइबेर दैजिना चीज है नहीं कोसेली।

0: अर्थात समेत गाभा उसका केरा अमरूद चिचिंदा लगायत के समेत आपन मामली ससुराली में ले जाके देना चलन रहल बाकल से उल्के दई सेकल पाछे मामली ससुराल में समेत पक्ष से दक्षिणा देना प्रचलन उल्के भदौ महीना भर समेत देना चलन रहलबा टीकापुर एक एकता नगर शिविर के समेत लैहर में उल्के देना समेत गैल गुमा बिके के परिवार बारे में समेत जानकारी कराइल रहा। खास करके नलाव विवाहित दुल्हा दुल्ही हुक्राफे समेत सरावन महीना भर लैहर में बैठना ओ समेत दुल्हा पक्ष से ओल्के के रूप में फलफूल लय के समेत ससुरार पक्ष हे समेत भेट करके देना विदाई ओ सामान्य दक्षिणा पठैना समेत चलन रहलबा। पहिल समेत ओ समेत ओल्के पर्व हे समेत धूमधाम साथ मनैना दूर दूर में रलक आफन्ता हुकरन कहाँ पुके ओल्के देना समेत जैना आउनो अब्बा के समेत पीढ़ी हुकरा भर ई पर्व खासे पर्व के रूप में नई लिहल बटैकेल बाट पर्व प्रति मनैन के समेत चिंता हिराइटी गैल भा कलशे पर्व मनैना शैली नई समेत परिवर्तन हुई आयल खिमा विश्वकर्मा के कहाइबा समय आधुनिकता और बसाई संगे समेत कारण मौलिक रूप में ओझेल में प्रति ऐलक ओल्के संक्रांति समेत केवल मीठ खानपीन समेत चाड़ पर्व के माध्यम से केल नहीं हुके हमार पुरखा इतिहास के प्रकृति संगे समीप्यता समेत सामाजिक एकता कायम करना कड़ी के रूप में रहगिलबा ऐसी हमार संस्कृति के रक्षा करना असिन पर्व के संरक्षण करना जरूरी रहल संस्कृति के जानकार तथा कैलाश सरस्वती मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष नारायण तिमेल सेना के कहाइबा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाछे फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बावई। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण से वर्षा करैना न्यून चापीय प्रणाली भारत के पश्चिम नेपाल ओर समेत ऐतिरलक ओर से आज रात से काल परौं सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश में भारी पानी पर्न संभावना रहेको से सतर्क

0: रहना आग्रह करल बा। प्राधिकरण से पत्रकार समेत सम्मेलन के आयोजन करके जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जारी करलक। पूर्वानुमान में आधारित वर्षा समेत होइन रलक ओर से सतर्कता रहना सूचना जारी करल बा। कलसे 600 से ध्यार उकरान खोज उद्धार के लग तैयारी अवस्था में रहना कहलबा। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेती से वर्षा होना पद्धति परिवर्तन रलक कारण से पहाड़ी भाग में ढेर पानी पर्ना पहिरो के कारण जनधन के क्षति समेत होना बताइलबा। यह वर्ष मनसून भिटेला दुई महीना के अवधि में देशभर बाढ़ पहिरो डुबान जैसी 1372 सौ समेत मनसून जन्य घटना हुईलक प्राधिकरण से जनाइलबा। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य प्रदेश सभामन विश्वास के मत प्राप्त करलबाट सोमवार के बैठक प्रदेश सभा के बैठक में मुख्यमंत्री आचार्य से पेश करलक विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव पक्ष में 45 और विपक्ष में 26 मत गिरल बा। मुख्यमंत्री आचार्य नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रीय जनमोर्चा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से विश्वास के मत देलके हो। विश्वास मा समेत प्रदेश सभा में कायम 83 प्रदेश सदस्य मध्य 71 सांसद समेत मतदान प्रक्रिया में सहभागिता जनाएल रहें। करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार अंतर्गत सावन महीना के दूसरा समेत पाक्षिक पुरस्कार आज घोषणा करगिलक हो। आंतरिक राजस्व विभाग के अर्थ मंत्रालय में कार्यक्रम आयोजन करके अर्थमंत्री डाक्टर सोनिम वाग्ले हो अर्थ सचिव डाक्टर घनश्याम उपाध्याय मार्फत पुरस्कार घोषणा करलक लागिल विभाग से जनाइल बा। गैल साउन 16 गते से 31 गते सम नियमित कारोबार में संलग्न उपभोक्ता हुकर आज घोषणा होना पुरस्कार सहभागिता जनाइल बाट। विभाग के अनुसार शुरूआती पहल समेत महीनामें पुरस्कार में सहभागी होना उपभोक्ता हुकरन के समेत संख्या समेत उछाल आयल बटागिल बा। उ अवधि में केल 3,57,149 थो समेत नगद कारोबार बिल उपहार केलाक दर्ता अपलोड समेत हुई बा। ये आगे साउन महीना में 15 दिन में बिल अपलोड करना उपभोक्ता हंकरण के कारोबार के संख्या 7,077 केल रह। उसका क्यूआर कारोबार मन से उपहार योजना स्वतः समेत सहभागिता में जनाइल बा। उपभोक्ता हंकरण के कारोबार संख्या 2,56,08,094 थो बढ़ के समय 3,20,86,380 पुगल बा। विभाग के पाछक 17 दिन के उपहार योजना के कारोबार के संख्या 3,24,34,229 पुगल बा। मध्य आज 17 जाने विजेता छनौट हुना बाट जमुना साउन 16 गते से लेकर 31 गते सम 17 दिन में एक एक जाने प्रति व्यक्ति 1,33,334 रूपया जितना कहलबा। वहां के कर कटा के खुद 1,00,000 प्राप्त करना बतागिल बा। भजनी नगरपालिका में जग्गा रलक विद्यालय परिसर में शिक्षक विद्यार्थी के सहभागिता में विद्यालय करेसवारी मंस नई उत्पादित फलफूल तरकारी और जग्गा निरलक विद्यालय में किसान उकरण से उत्पादित फलफूल तरकारी किनके टिवा खाजा मसमेत बनैना विषय में लाओ बहस शुरू हुई बा। स्थानीय उत्पादन मरलक विद्यार्थी उकरण प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 20 रूपया में लगानी से समेत गुणस्तरीय खाजा दे नहीं सकना रलक ओर से विद्यालय से उत्पादन करना सीखना और समेत एकर समेत मात्रा बढ़ा के फिर कर सकना नगर पालिका समेत अभी भावक हुकरण के अपेक्ष रहल बा। विद्यालय के बाल बालिका हुकरण खवाजिना दीवा खाजा पर्याप्त पोषण युक्त बनैना विद्यालय में करसबारी समुदाय में फलफूल तरकारी खेती समेत बढ़ैना प्रयास सरकार वाला हुकरा में एक मत हुई बाट। शनिचर के कर्मेश्वर मावी भजनी में जनप्रतिनिधि शिक्षक अभिभावक किसान समेत विद्यार्थी सहभागी कार्यक्रम में सहभागी हुकरा सरकार से प्रति विद्यार्थी दुआ खाजा में 20 रूपया समेत अपर्याप्त देखा गेल बा। भजनी नगरपालिका में विकास केलक युवा ऐक्यबद्धता याद के समन्वय में शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा से सकू विद्यालय में दुआ खाजा मेनू बना देहल बा। मेनु अनुसार हरेक दिन पोषणयुक्त खाजा खुवाइपर्ना व्यवस्था रहलबा। खोज खबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फेर से विश्वन तिरवी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछे से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 43 26।
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
6: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
5: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
6: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
5: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
6: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
5: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
6: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
5: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
6: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
5: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
5: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
7: तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
8: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागतमा सभामुख दोल प्रसाद अर्याल प्रतिनिधि सभा के सांसद के से उठायल जिज्ञासा हुकरण के उत्तर देनतला प्रधानमंत्री हेसमेत रूलिंग करल बाट विपक्षी दल के सांसद से यागे अधिकांश बैठक में प्रधानमंत्री से जवाब पाईपना मांग सहित के रूलिंग के लाग अनुरोध करती आयल बता गिलबा सभामुख अर्याल से प्रतिनिधि सभा के नियमावली 2083 के नियम 56, 57, 58, 59 बमोजिम प्रतिनिधि सभा के जवाब देनक लाग प्रधानमंत्री हे समेत आज के बैठक में निर्देशन दे गिलेखो यागे आज के बैठक में फिर समेत विपक्षी सांसद उकरण के उठायल समेत सांसद से उठ के विरोध जनायल रहे विपक्षी सांसद उकरण विरोध जनायल पाछे सभामुख अर्याल से प्रतिनिधि सभा के नियमावली 2083 के नियम 56 अनुसार प्रधानमंत्री वा निजी कार्य क्षेत्र संघ समेत प्रत्यक्ष रूप में संबंधित महत्वपूर्ण विषय प्रश्न पूछनाक लाग प्रत्येक महीना के पहल हप्ता के कौन दिन समेत बैठक में समेत एक घंटा निर्धारण करना कहना प्रावधान बमोजिम गंभीर ध्यान आकर्षण हुईल स्पष्ट पर्ल बाट। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल से भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष धीर रज सेठ समेत नेपाली सेनाकै मानार्थ महारथी दर्जनी चिन्ह प्रदान गर्नबाटै आज राष्ट्रपति भवन सिडल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल सेनापति सेठे मानार्थ महारथी के दर्जनी चिन्ह प्रदान करगिल खोन नेपाल भारत बीच के सन 1950 से लेके एक औरा देश में समेत सेना प्रमुख है मानार्थ रथी के समेत दर्जनी चिन्ह प्रदान करना परम्परा अनुसार सेठे इस सम्मान करगिल बताएगिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से थार समुदाय परम्परागत प्राग पूर्वक काल से लेके मनाईटी आयल गुरही प्रवास धूमधाम के साथ मनाईटी सर्वपश्चिम आज से हर समेत हर्षोल्लास के साथ उल्के पर्व मनाईटी ऐसी पर्व से एक आपस में भेटघाट करना अवसर जुटेना नागरिक विश्वास भजनी में स्थानीय उत्पादन मन से दिवा खाजा बनाईना बहस शुरू दिवा खाजा पोषण युक्त बनाई पर्व में चाशो ओ आज देशभर पानी पर्न संभावना कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना रले कुर्से सतर्कता रहना मौसम बीत के आग्रह नीचा बकलक थारू भाषक 5 बजे खोज खबर रत रहे और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा में खोज खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुनते रहे राम राम।
9: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
9: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
1: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
9: अब त म ढुक्क
10: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
1: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
11: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आरती ब्युटी एण्ड कस्मेटिकमा तीजको अवसरमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्रान्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्युटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
12: सञ्चालक आरती चौधरी सम्पर्क नम्बर 9864470483 हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन् जस्तै स्कूल ब्याग क्यारिङ ब्याग लगेज ब्याग फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमर गरिन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
11: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टिकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी
13: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
14: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज
15: ए रुम गाउँको ठिटो

0: टीकापुर नगरपालिका को ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।
0: तपसिल
1: वडा नम्बर 4 अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 2 गते,
0: वडा नम्बर 5 मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 3 गते,
1: वडा नम्बर 2 विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 4 गते,
0: वडा नम्बर 3 रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 5 गते,
1: वडा नम्बर 1 गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन भदौ 6 गते,
0: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते,
1: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते,
0: वडा नम्बर 9 झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते,
1: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते
0: र वडा नम्बर 7 छत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते।
1: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि।
0: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
2: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
3: कार्यक्रम छोट मिट साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
4: जब देखनो तुहिन है
3: यदि मन परत ही कले से अपन मन सुनेना चाहती कले से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत। गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले भी कले से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0991-2655 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: ले
1: एंसल पैक किन लिते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लिते कैश फिर तक ले लिते
2: एंसल पैक किन लिते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना

0: के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
1: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइती रहल बा।
0: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28। आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? 500 सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
4: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जनाउ कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टीशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो, घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली को अत्यंत जरूरी सूचना। व्यावसायिक रूप में केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुखड कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091-561-414 र 091-561-415 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली।

0: एलिटे
1: एंसल पैक किलिटे
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक लिलिटे कैश फिर तक लिलिटे
2: एंसल पैक किलिटे शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलालीको अत्यन्त जरुरी सूचना व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुखर कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091-561-414 र 091-561-415 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली

राजन परीक्षित श्रीमद भागवत पंचम स्कंद प्रियव्रत नाम को राजा का छोरा तेरा भाई मध्य में जेठा छोरा आग्नेन्द्र ने तपयामी बस को ठावर राज्य कर आग्नेन्द्र नाम को राजा को अब इस किसिम राज्य संचालन पक्ष में नौवटा छोरा जन्म नगो सरकार नौवटा छोरा मध्य में नौ भाई राज्य को अभिलाषा कायम राख तैयारी भे लौता नौ भाई जम्मू द्वीप को नौ खंड में विभाजन कर दी बक्सु राजा ने पहिलो खंड को नाम हो अज नाम नाम खंड दोस्रो किम पुरुष तेस्रो हरिवर्ष चारों इलाव्रत पांचों रम्य छैटों हिरण्यमय सातों कुरु आठों भद्रासुर नौ केतुमाल नाम खंड होना गो सरकार इसमें नौवटा खंड में नौ भाई को नाम ने प्रख्यात भर राखी जिस मध्य में तपाई हामी बस को ठाव चाहे मध्य भूमंडल रेखा में पर्स जिसको जब भूमध्य भाग में इस किसिम जिसको नाम हो सुंदर शहर सुंदर नगरी सुंदर स्थान अजनाप नाम खंड त्यो अजनाप नाम खंड में नाभी राजा ने राज्य कर वहां नाभी राजा राज्य संपा करे राजा आग्नेय जंगल सवारी हो प्रियव्रत ने सात दिन छोड़े कई लगेन आग्नेद्र नाम का राजा ने लगेन आग्नेद्र का छोरा नाभी ने संतानोत्पादन करना को निमित्त भगवान नारायण वासुदेव को प्रार्थना कर नाभी नाम का राजा जन्मनुभो नाभी राजा ने बड़ो प्रेम साथ विनती करो बड़ो आनंद को साथ में ध्यान भो मनन भो कीर्तन भो नाभी नाम का राजा नाभी राजा का छोरा महाराज संतान नौना को कारण भगवान को प्रार्थना करे श्याम सुंदर भगवान गर्छौं पुकार।